0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

0: की जय।
1: श्री सद्गुरु स्वामी माधवानंदजी गुरुदेव
0: की जय।
1: विश्व गुरु महामंदरेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव
0: की जय।
1: श्री अलकपुरी सिद्ध परंपरा की जय।
2: Ja,

वान की जय सिद्धेव पुरुष महादेव की जय स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय श्री अलका पुरुष महादेव की जय।

0: बोले श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय।
1: गुरुदेवा की जय। श्री मीराबाई जी की जय।

जय श्री सतगुरु देवा की जय देव पुरी जी महादेवा की जय सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु देवा की जय श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय भारत माता की जय।

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्वगुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

देवा की आराधि भगवान दीप नारायण भगवान की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।

अर प्रभु जी साक्षी सुदयात्मा, दर ध्यान सोहम मुनि मोहन, सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख।

0: ಪ್ರದೀಪ್ನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ. ಸುರತಕರ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಧರಸಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್,
1: azok akik koncentráció
0: van, will meditate on the Gurudev,
1: meditálna Gurudevan,
0: bhava dukkha se tari atma, then from this samsaras, dukkhas of the samskara,
1: ebből a samsarából, a samsara,
0: the jiva will liberate itself,
1: szenvedéséből,
0: otherwise this jiva will suffer in this world,
1: a jiva felszabadul, egyébként tovább szenved.
0: The Mahaprabhuji disciple Sivaranji,
1: Mahaprabhuji
0: tanítványa, he made this prayer and he's singing this prayer.
1: Sivaranji írta ezt az imát és ő énekelte.
0: Gurudev nirgun mahatma, Gurudev is the nirguna, formless.
1: Gurudeva a forma nélküli átma.
0: What is such a beautiful prayer.
1: Milyen gyönyörű ima.
0: Morning you should sing this prayer.
1: Reggel énekeljétek ezt.
0: Tomorrow will be other prayer.
1: Holnap más ima lesz.
0: This is also very beautiful one.
1: De ez is nagyon gyönyörű.
0: So we should know all these meanings of these prayers.
1: Ismernünk kell mindezeknek az imáknak
0: Ho
1: a jelentését.
0: Ho Guru Sukdhama Swami, Jagat ke Atma Prabhu Sarav Jagat. आत्मा सुख कंद हो आनंद जी निष्कंद हो मम तारणम निष्कंद हो मम तारणम ओम शांति श्री दीप नारायण भगवान अलकपुरी जी महादेव की माधव कृष्ण भगवान की
1: Vishwaguru Mahamandaleshwar
0: Devpurisha Mahadeva ki jai.

परम सुकरम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुतम् नमाम्यम् ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपन सजते सर्वम संध्या दीपम सर्व सत्यम

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को।

0: दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap and please sing one bhajan. Darad duk dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagor. Catch me there.
1: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में कबीरा, हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

consciousness. Between is that Shakti, that's called yoga. Uniting, balancing, harmonizing. These are the three qualities or definition of the Om and Yoga. Om Kar Bindu Sayuktam Nitya Dhayanti Yogina. Akar, Ukar, Makar. Akar, Ukar, Makar. The form, the sound, and the awakening. Within this becomes the yoga. Yoga is not a part of any religion, but yoga is not a part of any religion, but all religions are part of the yoga. Because dharma, mantra, yantra, tantra, prarthana, ukar, makar, whatever in any religion you are repeating or saying, the definition of the God is that coming from that first nada rupa parabrahma. That is a omkara. Don't take om as a religious symbol. I'm sorry for that. It's a shame that Indian government managed to make a day, International Day of Yoga, but they removed the Om. That is not correct. You did not represent the yoga properly. My dear, just twisting body up and down, this is not a yoga. I am so surprised. I am born in India. I am international Baba. How can happen that Indian government don't know what is the yoga? Challenge, my challenge. आसन प्राणायाम नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भाती ये तो छोटे सा है कुछ भी. If you announce the yoga, represent in proper way what is the yoga. Therefore, all my dears around the world who is listening me, and all other yoga teachers and centers, please write to them, government of India, why we are questioning them, why did you remove the symbol Om from yoga? One way they said it is the science of yoga is body, mind, consciousness and spirituality. So where is the posture is connected to spirituality? Where is a posture is representing the consciousness. Where the posture is compared with the postures with the mind. Physical, this is called yoga vyayam. And through this yoga vyayam, certain systems in the body will be harmonized. But yoga is not only the exercises, yoga is beyond that. And being the motherland of the yoga, it is the first duty of the government of India to represent yoga in better way. Don't be fearful. Don't think the world will say this is a Hindu. What have you against Hindu? What have you against Hindu? बताइए क्या हिंदू धर्म के अंदर कोई कमी है क्यों आप डरते हो हम ओम लिखेंगे तो कहेंगे धर्म हो गया अरे वाह कायरो तीन सजावट देश को सती संत और सूर और तीन लजावट देश को कपटी कायर और करूर तो क्या आप करूर हो गए आप घबरा रहे हो
माता जने तो भक्त जन के दाता के, नहीं तो रहिए बांझ मत गमाइए नूर। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर करूर। अगर आप अपने आप को कायर समझते हो तो कबरा, इट इज ए संप्रदायक। क्या संप्रदायक कहते हो मेरे बच्चों? हिंदुस्तान सभी धर्म की मातृभूमि है, सभी धर्म योग से निकला है, योग किसी का धर्म नहीं। देयरफॉर आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान मोदी जी, प्लीज डू नॉट रिमूव द ओम फ्रॉम द लोगो विच आपका द आयुष डिपार्टमेंट हैज डिस्ट्रॉयड दिस सिंबल इन होल वर्ल्ड। इन आई ट्रेवल 43 टाइम्स राउंड द होल वर्ल्ड, दे आर मैनी मैनी योगा सेंटर्स, मैनी मैनी फ्रॉम मैनी साधुस एंड सम वन हु हैव नो साधु देर, दे इवन डिडंट सी द गुरु, दे डिडंट कम टू इंडिया, बट दे हैव ए योगा सेंटर, योगा स्टूडियो एंड दे हैव ए ओम ऑन इट एंड एवरीवेयर हु इज प्रैक्टिसिंग ओम इन द वर्ल्ड, मे बी दिस मुस्लिम्स और द क्रिश्चियंस और हिंदूज और यहूदीज और एनी वन, फर्स्ट दे विल सिट इन मेडिटेशन एंड चेंट ओ अकार उकार मकार। परा पश्यंती बेकरी, आस्क देम व्हाई दे चेंट द ओम, बिकॉज व्हेन यू चेंट द ओम देन बॉडी माइंड सॉल एंड आत्मा बिकम्स वन, साइंटिफिकली प्रूफ्ड। देयरफॉर माई मैनी मैनी योगा डिसाइपल्स, मैनी मैनी अदर योगा सेंटर्स विच इज नॉट कनेक्टेड विद योगा एंड डेली लाइफ, बट दे आर सेइंग टू मी, स्वामी जी व्हाट हैपन्स, नाक काट दिया, यू चेप्ड ऑफ द नोज, वो नोज फिर नहीं जुड़ेगा, वो नोज कटता ही नहीं है किसी से, नो वन कैन चेप ऑफ दैट नोज ऑफ दैट डिवाइन साइंस ऑफ योगा। देयरफॉर योगा इज गुड फॉर ऑल, डोंट थिंक फॉर रिलीजन्स, योगा इज फॉर योर हेल्थ, फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, योगा इज अ वे टू द परमात्मा। इट इज सेड योग के द्वारा ही परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, इट वॉज द वॉइस ऑफ द उपनिषद, इट वॉज द वॉइस ऑफ द पतंजलि, इट वॉज द वॉइस ऑफ मैनी सेंट्स, से टू डिसाइपल I will lead you to the supreme Brahma Jnana, my word, my Jnana, I am the way to God. Then it was also sent in the 10 commandments that where God said, I am way to God. Yes, why did Jesus say this? If Jesus was there, because people were gambling, सट्टा खेल रहे थे with the gold in the front of the temples. Jesus came and saw the gold. Jesus said, don't believe in this wrong gold. He's not a god. I am the way to God means my words will lead you to God, not this gold. So gold को God में change किया, but it is right, Jesus' words is correct. अरे पैसे कुछ नहीं है, पैसे भगवान नहीं है, कलयुग में रुपयो राम, तो देख लो कहीं हो रहा खोटा खोटा काम। इसीलिए that's why the day of International Day of Yoga announced by our respected
Prime Minister Modi ji,